0: Jogger, Star Jogger.
1: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
2: Star Gear,
1: asai.
3: अरे यार, हमको इंडोनेशिया में चाहिए।